Japji Saiv, Ekonkar, Satinam, Kartapur, Nirbo, Nirbera Kalmut, Ajuni, Sevam, Guru Prasad, Chap, Aad Sach, Chugat Sach, Heavy Sach, Nanako Sibi Sach, Soche Soch Nahovei, Jesochi Lakvar, Jupe Jup Nahovei, Jelaira Liftar, Bukya Bukna Utri, Jevana Puryapar, Sesya Napalak Hoet Aikna Chalinal, Kiv Sachiara Hoye, Kiv Guri Tutipal, Ukam Lajai Charna, Nanakalikyanal, Ukami Hovanakar, Ukam Lake Ajai, Ukami Hovanji, Ukam Levariai, Ukami Utamnich, Ukami Duk Sukapaye, Ekana Ukami Vakshish, Ukami Sadabavaye, Ukami Unda Sapko, Vahar Ukam Nakoi, Nanaki Ukami Jevujeta, Hoveke Henakoi, Gave Kotan, Hoveke Setan, Gave Kota Chaninishan, Gave Kogun Varia Yachar, Gave Kuvikavikam Vichar, Gave Kosashtare Tanke, Gave Kojile Firde, Gave Kojapedi Sedur, Gave Kovehe Harahadur, Katina Katina Avetut, Kat Kat Katikotikot Kut, Deta Dele Detat Pai, Juga Jugantar Kai Kai, Ukami Hokam Chala Erao, Nanaka Veseve Parvao, Sacha Saiv Sacha Nai, Vakyava Wapar, Ake Mange Deite, Datkere Datar, Ferke Age Rakie, Jedise Darbar, Moke Volan Bolie, Jesundare Piar, Ambrete Vela Sachana Overia Ivichar, Karmiave Kapara, Nadri Moktuar, Nanake Vijanie, Ape Sachiar, Tapina jaye kitana hoy ape apne ranjan soy jinse viya tim payaman nanake gave kunnidan gave sunye marva kya vao tu par hasu kale jaye gurmukh nadan gurmukh vedan gurmukh virasmai guri shar gur parma gur kapa ki mai che ho jana akana hi kehna katna jaye gure ke devu jaye Savana jia kaek datta, so me visin najai. Tiritana vajetisapava, vimbane ke naikri. Cheti situ pai veka, vinke me melele. Madhvich karanjamar mahan, jay kurki iksuni. Gureke devu jai. Savana jia kaek datta, so me visin najai. Chechukchare arja, urna suni hoi. Nava kandavich chanye nav sale savkoi changa nao rakae ke jaskere chakle jetis narana ave taparna pucheke kita andar kita ka doshi doshtre nanak ni gungun kare gunvantia gunde teha koe na suje jetis kun koe kare sunye sir persuna sunye tarata lakas Sunye tiplo patal, sunye tona sakekal, nanak vakata sadavegas, sunye dupap ganas, sunye isher barma enda, sunye motsala amanda, sunye jojugatan vet, sunye shat simretevet, nanak vakata sadavegas, sunye dupap ganas, sunye satsantokyan, sunye atsat kaishnan, Sunye par pave man, sunye lage saheshtian, nanak bhagata sadavigas, sunye du pap ganas, sunye saragna kega, sunye shipi padishao, sunye andar pave rao, sunye hatuve askao, nanak bhagata sadavigas, sunye du pap ganas, mane ki kat kahe na jai, Cheko kahe kache pashitai, rakar kam nale kanahar, mani kava karam vichar, esa naam narinjan hoi, cheko manjane mankoi, mani sur tove mambut, mani sagavanara kisut, mani mochanta nakai, mani jamke sat najai, esa naam narinjan hoi, cheko manjane mankoi,
माने माग तक न पाए, माने पत्सियों पर गजाए, माने मगन चले पंथ, माने तरम सती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मंगोए, माने पावे मोक द्वार, माने परवारे साधार, माने तरे तरे गुरु सिख, माने नानक कवे नविक, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मंगोए, पंच परवान पंच प्रधान पंच पावे तिर के मन पंच सोए तारा जान पंच का गुरे ध्यान जे को कहे कहे विचार करत के कन्ने ना इसमत तोल धर्म क्या कपूत संतोप धर्म क्या की सुत जे को बूझे होवे सचियार तले ऊपर के तबर धरती होर तरे होर तिस्ते बार करे कमजोर जी जारम गा के नाव सबन लिखिया बुरी कलम ए ओ लिख लिख जाने कोय लिखा लिखिया केता होय कित तन सियारियो रूप कित तचने कुंकुद किता पसाओ ए को कुआओ तिस्ते होए लगतारियाओ कुरित कवं कहा विचार परिन जावा ए कुवर ज्योत पावे सह बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूछ असंख तपताव असंख कुरिया मुवेद पथ असंख चोग मुराय उदास असंख भगन ज्ञान विचार असंख सत्य असंख दत्तार असंख सुर मुवक्सार असंख मुलिवलाय तार कुरित कवं कहा विचार परिन चावा एक वर जो तु पावे सह बलिकार तू सदा सलमन निरंकार असंख मूर राम कोर असंख चोर हरम मकोर असंख मर क जाए चोर असंख अल्व हत्या कमाए असंख पापी पप कर जाए असंख कुरियार कुरे फिराए असंख मलेश मल बकाए असंख दिन दसी करे वर नानक नीच कहे विचार परिन चावा एक वर जो तु पावे सह बलिकार तू सदा सलमन निरंकार असंख नाव असंख ताव अगम अगम असंख लो असंख अरे सिरवर होय अग्रि नाम अग्रि सला अग्रि ज्ञांगी कुंगा अग्रि लिकम्बो लंबन अग्रि संसन जो विकन जिन लिख तिस नाय जे फुरमाए तित पाए जे तकीता तित नाव विन विन ए कोताव कुरित कवं कहा विचार परिन जावा एक वर जोत पावे सह बलिकार तू सदा सलमन निरंकार बारिये हाथ तरे तंदे पानी तूते हुते स्के मुल पलीती का परा होए देसा बुलना ए उदोए बारिये माँ पापा के संग उतो पेना वे के रंग भूनी पापिया करनाए कर कर करना लिखने जाओ आपे पीछा पे विकाओ नानक हुकमिया हो जाओ तीरथ त्या दतन जे को पावे तिर के मन सुनिए मन मक्की तबाओ अंतर्गा तिरा मन नाओ सकुन तेरे में नाए कोय विंगुन की ते भगत न होय स्वास सात पानी भरमाओ सत सुअन सदा मन चाओ कवन सुबे लवत कवन कवन चित कवन भर कवन सिरुति माओ कवन जितो आकार बिल न पाया पंत जी होवे लिख पुरान भगन न पायो का दिया जन लकल लिख कुरान तिते वर न जोगी जाने रूप माओ न कोय चकरता सिद्धि को साजे आपे जान सोए कीव करा का कीव सलाए कीव वरनी कीव जाना नानक को साकुआ के एक लिख सियाना बदा साई बदी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने आके ज्ञान न सोए पताला पताला आगास आगास और कोर के बल तके एक हाने के बाद सहस तार कहां कते व असुन का एक दात लेखा होए त लिखिए लेके होए विनाश नानक बदा आखिए आपे जाने आप सलाई सलाई तिसर न पाया नादरी आवे पावे समल न जानिए समल स सुल्तान केरी सती मल दन
Kiritul na hoveni jetes manun na vissare. Antana siftikena ant, antana karne dena ant, antana vekesiona ant, antana jape kiaman mant, antana jape kita akar, antana jape paravar, ankaranka tevalai, take antana pae jai, eo antana janikoe, bahuta kae bahuta hoi, padasae buchatao, ucheo paruchanao, Evara huche hove koe, tisuche ko jane soe, jevara ap jane apap, nanak nadri karmi dat, bohota karmi kya na jai, bada data tinatamai, kete mange jota par, kete akarnai vichar, kete kap tu te vekar, kete lele mukar pai, kete mure kai kai, kete adu puk sadmar, Evida tridatar, bandakalasi bane hoi, horakana sake koi, jeko kahe akan pai, o jane jitia moikai, ape jane ape te, ake seve ke ike, jisno baksha safutsala, nana ke pachai patishao, amul gun amul vapari amul bandar, Amul ave amul le jai, amul vare amul la samai, amul dharam amul divan, amul tul amul parvan, amul bakshish amul nishan, amul karam amul furman, amul amul akhyana jai, aka kalle valai, ake ved pat puran, ake pare kare vadyan, ake varme ake inda, ake govite gobinda, Ake ishera ke sid, ake kete kite bud, ake dharam ake dev, ake saram anjansev, kete ake akan pai, kete kirkeru tujai, kete kite hor kareta, akan sake ke ike, jevat vave tirat hoi, nanak jana sacha soi, jeko ake volbidar, talikya sirgavar agavar, Sodar ke ha jit sarat samale,

तुनु पनपनी वेसंतर गावे रचे तरम द्वारे गावे छिद कुपा लिख जान लिख लिख तरम विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इतता संवेदे देव दिया धरनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सद विचारे गावे जति सती संतोकी गावे वीर करारे गावन परन परन रखी सजू जू वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सूर मच पियाले गावन रतानु पारी तेरे असत्य रतनाले गावे जोत महावन सूरा गावे कर विचारे गावे कंदमलदार बरबंदा कर कर रखे तारे सेतुनु गावे जोत पावन रहते तेरे बगर साले होर किते गावन से मिचि न आवन नानक या विचारे सोई सोई सदा ससाय सच सच नाई हे वि होसी जाय रजासी रचना चिन रजाई रंगी रंगी वती कर कर जिनसी माया चिन उपाय कर कर वे के किता अपना जीव तिसकी बरियाई ज्योतिष पावे सोई करसी हुकम न कर जाय सो पति साव सहा पति साहेब नानक रहन रचाय मुंदा संतोख सरम पचोली दियांकी करी विभूत किंता काल क्वारी काया जुगतंता परतीत आई पंती सकल जमती मंज जगजीत आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जु जु वै गोवेश भुगत किया गया वंदार कर कर बजे नाद आप नानाती सब जाके रिसवर रसाद संजोग बिजो दुखा चलावे लेके आवे बाग आदेश से आदेश आवे नील नाद नहा जु जु वै गोवेश एका माए जुगते भी आए तीन चले परवन एक संसारी एक पंडारी एक लाहे दीवन जीव तिस पावे तवे छलावे जी फोवे फुरमन वो वे के ओ न नद्र नावे व उतय ओ विदन आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जु जु ए गोवेश आसन लोए लोए वंदार जोत स पावे सोए कावर कर कर वे के सिर जनहार नानक सच की सच्ची कार आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जु जु ए गोवेश एक दूजी व लख होवे लखवीस लख लख खेरा आखिए एक नन जगदीश इरत पतारिया छुरिया हो इक्कीस सुंगला आकाश की किता आये रीस नानक नदरी पाये कुरे कुरे तीस अकन जोर जुपे न जोर जो न मंगा दे न चोर जो न जीवन मन न चोर जो न राश मल मंसोर जो न सुरती की अम्बिचार जो न जुगदिशते संसार जिस जोर करवे के सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुती तीती वार पवन फनिया करी पताल तीस विश धरती रति धरम साल तीस विश चिया जुगा के रंग तिनके नान अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिते सोहन पंच परवन नदनी करम पवे निशान काच पखाए उते पाए नानक या जपे जाए धरम कन का ए ओ धरम ज्ञान कन का आको करम केते पवन पनी वे संतर केते कन महेश केते वर में करे करिये रूप करम के वेश केते करम भूमि मिर केते तू उपदेश केते ईशा सुर केते मंदर देश केते सीत वदनत केते देवी वेश केते देव तरन सुन केते हृत समन्द केते कानी केते बानी केते पत नरिंद केते सुरति सेव केते नानक अंतन अंत ज्ञान कान ज्ञान प्रचंत तिते नाथ कोल ओ तनंत सरम कन की वानी रूप तिते करी करिये व उतनुप तकिया गला कतिया न जाय जे को कहे कि चे पछताय तिते करिये सरा मंबुद तिते करिये सरा सदा की सुत करम कन की वानी जोर तिते होर न कोय होर तिते जोत महा बंसूर तिमे रम गिरिया भरपूर
तिते सितो सिता में ममाए ताके रूप न कत न जाए नाओ मर न ताके जाए चिंके राम से मन माए तिते भगत वसे के लो गरिय नन सच्चा मन सोय सच कंद से निरंकार कर कर वे के नदरन हल तिते कंद मल दय वरवंदा जेको कहे तांत न अंत तिते लो आकार जीव जी हुकम तवे तिवकार जीव विगा से कर विचार नानक कथन कर सर जात पहारा दिर सुनियार एरन मत वे तकियार बो कला कं तपताओ बंद बाओ अमृत तल करिय शव सक्षी तकसर जिंको नदर तरम तिंकर नानक नदरी नदरिन हार श्लोक पवन गुरु पानी पिता मत तरत महत दिवस राय तोय दाई दया खेल सकल जगत चंगियाया बुरियाया पाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी केने रेखे दूर चीनी नाम दियाया केम शकत गाल नानक ते मुगह चुले केती जूती नाल चीनी नाम दियाया केम शकत गाल नानक ते मुगह चुले केती जूती नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

सत्कृन्न में, जुगत्कृन्न में, सत्कृन्न में, श्री गुरुदेवन में, आत्कृन्न में, जुगत्कृन्न में, सत्कृन्न में, श्री गुरुदेवन में, आत्कृन्न में, जुगत्कृन्न में, सत्कृन्न में, श्री गुरुदेवन में. Inhale. Exhale. Okay, let's lie on our back. Let's do some cat stretches. Let's go from side to side.